0: कल कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

अपन तो क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा, तू जा बस।

0: कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है।
1: A time check for you is 7 hours 17.
0: डोली सजा के रखना।
1: From the movie मुझसे दोस्ती करोगी।
0: डोली सजा के रखना।
1: On a beautiful Monday।
0: मैं तो

0: ओ
1: क्या हो गया
2: भाई? मैं देखता हूँ दादी, आप मेरे साथ आइए।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ फॉरगेट इट।

ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.